कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला। बचपन

सुभमन दारम रह तरंगा आदरे ओ ए अक्रोहतरक विदरे तरंगा जीवितन विदवान ने तमांग विदरक मना ए हम देख मसातुटो पदवा गाने में तमांग टमाई मैं मोहती सातुटिंग इन्ना ने नवनस वन एक मधे वनस वीमा इन्दीन ने जीविते हम तापरे कम आदरे कराना बाव बचमा ऐ मैं क्यों लक माली बिंदुनु वेलाव के हितान ना अमारुई नो बिंदुनु वेलाव कुत्सा कराने पुलवा ऐ मने ऐंदा

मन्नंगाया दरे कराना प्रेमे बैमी बिंदला दाना मीनिता यादरे यात्रे तीनों वैन समोगता देख तुम मात्वे ना ऐच्छराय रहने द चोदो बिचाने दो यार प्रेमे बैमी लिहादा मान मित्रया आदरे करान उन्हें नेतावत